0: अल्लाह वो है जिसने 60 आसमान बनाए और जमीन की किस्म से भी उन्हीं के मानिंद, उनके दरमियान हुक्म नाजिल होता रहता है। ये बात तुम्हें इसलिए बताई जा रही है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है और ये कि अल्लाह का इल्म हर चीज पर मुहीत है। उन्हीं के मानिंद
1: का मतलब ये नहीं है कि जितने आसमान बनाए उतनी ही जमीनें भी बनाईं, बल्कि मतलब ये है कि जैसे मुतादिद आसमान उसने बनाए हैं वैसी ही मुतादिद जमीनें भी बनाई हैं। और जमीन की किस्म का मतलब ये है कि जिस तरह ये जमीन जिस पर इंसान रहते हैं अपनी मौजूदात के लिए फर्श और गहवारा बनी हुई है, उसी तरह अल्लाह ताला ने कायनात में और जमीनें भी तैयार कर रखी हैं जो अपनी अपनी आबादियों के लिए फर्श और गहवारा हैं। बल्कि बाद मकामात पर तो कुरान में ये इशारा भी कर दिया गया है कि जानदार मखलूकात सिर्फ जमीन ही पर नहीं है, आलम बाला में भी पाई जाती हैं। बालफाज दीगर आसमान में ये जो बेशुमार तारे और सैयारे नजर आते हैं ये सब ढंडार पड़े हुए नहीं हैं, बल्कि जमीन की तरह उनमें भी बकसरत ऐसे हैं जिनमें दुनियाएं आबाद हैं। कदीम मुफस्सरीन में से सिर्फ इबन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु एक ऐसे मुफस्सिर हैं जिन्होंने उस दौर में इस हकीकत को बयान किया था जब आदमी इसका तसव्वुर तक करने के लिए तैयार न था कि कायनात में इस जमीन के सिवा कहीं और भी जी अक्ल मखलूक बसती है। आज इस जमाने के साइंसदानों तक को इसके अमर वाकया होने में शक है। कुजा के 1400 बरस पहले के लोग इसे बासानी बावर कर सकते, इसीलिए इबन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आम लोगों के सामने ये बात कहते हुए डरते थे कि कहीं इससे लोगों के ईमान मुतजलजल न हो जाएं। चुनांचे मुजाहिद कहते हैं कि उनसे जब इस आयत का मतलब पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, अगर मैं इसकी तफसीर तुम लोगों से बयान करूं तो तुम काफिर हो जाओगे और तुम्हारा कुफ्र ये होगा कि उसे झुठलाओगे। करीब करीब यही बात सईद बिन जुबैर से भी मनकूल है कि इब्ने अब्बास ने फरमाया, क्या भरोसा किया जा सकता है कि अगर मैं तुम्हें इसका मतलब बताऊं तो तुम काफिर न हो जाओगे। बहवाले इब्ने जरीर, अब्द बिन हुमैद, ताहम इब्ने जरीर, इब्ने अबी हातिम और हाकिम ने और शौबल ईमान और किताबुल अस्माओ व सिफात में बहकी ने अबू ज़ुहा के वास्ते से बेख्तलाफ़ अल्फाज इबन अब्बास की ये तफसीर नकल की है कि फ़ी कुल अर्ज़िन नबीयुन का नबीयुकुम व आदमो का आदमा व नूहुन का नूहिन व इब्राहीमो का इब्राहीमा व ईसा का ईसा, यानी उनमें से हर ज़मीन में नबी है तुम्हारे नबी जैसा और आदम है तुम्हारे आदम जैसा और नूह है तुम्हारे नूह जैसा और इब्राहिम है तुम्हारे इब्राहिम जैसा और ईसा है तुम्हारे ईसा जैसा। इस रवायत को इब्न हजर ने फतेहुल बारी में और इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में भी नकल किया है और इमाम ज़हबी ने कहा है कि इसकी सनद सही है, अलबत्ता मेरे इल्म में अबू दुहा के सिवा किसी ने इसे रवायत नहीं किया है, इसलिए ये बिल्कुल शाज रवायत है। बाद दूसरे उलमा ने इसे किज़्ब और मौजू करार दिया है और मुल्ला अली खारी ने इसको मौजूआत कबीर सफ़े 19 में मौजू कहते हुए लिखा है कि अगर ये इबन अब्बास ही की रवायत है तब भी इसराइलियात में से है, लेकिन हकीकत यह है कि इसे रद्द करने की असल वजह लोगों का इसे बईद अल-अक्ल व फहम समझना है, वरना बजाय खुद इसमें कोई बात भी खिलाफ अक्ल नहीं है। चुनांचे अल्लामा आलूसी अपनी तफसीर में इस पर बहस करते हुए लिखते हैं, इसको सही मानने में न अकलन कोई चीज माने हैं न शरअन। मुराद ये है कि हर जमीन में एक मखलूक है जो एक असल की तरफ उसी तरह राजे होती है जिस तरह बनी आदम हमारी जमीन में आदम अलैहिस्सलाम की तरफ राजे होते हैं, और हर जमीन में ऐसे अफराद पाए जाते हैं जो अपने यहां दूसरों की बनिस्बत उसी तरह मुमताज हैं जिस तरह हमारे यहां नूह और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुमताज हैं। आगे चलकर अल्लामा मौसूफ कहते हैं, मुमकिन है कि जमीनें 7 से ज्यादा हों और इसी तरह आसमान भी सिर्फ 7 ही न हो। 7 के अदद पर जो अदद ताम है, इक्तफा करना इस बात को मुस्तलजिम नहीं।

दिल के सच्चे लोग अक्सर आजमाए जाते हैं, दिल के सच्चे लोग अक्सर आजमाए जाते हैं, भलाई के सिले में जख्म खाए जाते हैं। जो मुखलिस हैं उन्हें बेवकूफ कहते हैं लोग, जो मुखलिस हैं उन्हें बेवकूफ कहते हैं लोग, मतलब परस्त यहां पर अकलमंद कहलाए जाते हैं। हमेशा होता है खुद को बांटने वालों का अंजाम यही, पहले पहल वही लोग राह से हटाए जाते हैं। दिलों में जिनके वफाओं के चिराग जलते हैं, वो जमाने की महफिलों में सताए जाते हैं।

सच कहूं तो मुझे ये उनवान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। किसी कदर हो गई मसरूफ ये दुनिया अपनी, एक दिन ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। इनकी खिदमत तो बहुत दूर की बातें हैं यहाँ, इनकी खिदमत तो बहुत दूर की बातें हैं यहाँ, बूढ़े माँ बाप का फरमान बुरा लगता है। मेरे अल्लाह, हमारी कौम को जिल्लत से निकाल, इतनी जिल्लत में मुसलमान बुरा लगता है। सच कहूँ तो मुझे ये उनवान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है।

या नहीं आई, मिस्रा नहीं आई ना, तो वो इजिप्ट है। ओके, लेकिन इस आयत में सूरतुल बकरा में हम देख रहे हैं इहबितू मिस्रन, इहबितू मिस्रन, तो ये कौन, ये इजिप्ट है या कोई भी जगह? कोई भी जगह। अच्छा, कोई भी जगह के लिए अरबी में औरल अल्फाज भी इस्तेमाल हो सकते थे। यहां कहा जा सकता था इहबितू अर्दन, कोई भी जमीन, इहबितू बलदन, कोई भी जमीन, इहबितू क़िताअतन मिनल अर्दी, कोई भी खिता जमीन का, इहबितू क़रियतन, इहबितू मदीनतन, बहुत सारे अल्फाज थे, लेकिन अल्लाह ने उन तमाम अल्फाज में से एक लफ्ज चुना, वो क्या है? मिस्रन, जो किसके करीब है? मिस्र के करीब है। तो जानबूझ कर एक ऐसा लफ्ज चुना गया जो मिस्र के करीब है, और जगहों पे ये लफ्ज इस तरह इस्तेमाल हुआ, वाहिद एक जगह इस्तेमाल हुआ है। तो अब इस सोचने की कोशिश करते हैं कि जो लफ्ज इजिप्ट के मुल्क मिस्र के इतना करीब है, मिस्र हुए बगैर, उसका लफ्ज, उस लफ्ज का यहाँ इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? असल में मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके दो मिशन थे। एक मिशन उनका था कि उन्होंने बनी इसराइल को आज़ादी दिलानी थी फिरौन से, और फिरौन के पंजे से निकाल कर उन्हें पानी के दूसरी तरफ सहरा में आज़ादी की ज़िंदगी की तरफ ले जाना था। ये उनका पहला मिशन था। दूसरा मिशन ये था कि अब जब वो आज़ाद हो गई कौम, तो उसकी हिदायत करनी थी। तो ये दो मिशन हैं उनके, इस तरह समझ लें, एक मिशन हिजरत से पहले और एक मिशन हिजरत के बाद। इसीलिए शायद ये बहुत सारी वजूहात में से एक वजह इस हिकमत की कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में बाकी तमाम अंबिया से ज़्यादा किया है। सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने जिस रसूल की बात की है ना, वो मूसा अलैहिस्सलाम है। क्यों? क्योंकि उनकी सीरत और हमारे नबी की सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत सारे तशाबुहात हैं, बहुत मुतशाबे हैं। हमारी सीरत, हमारे नबी की सीरत में भी दो मिशन हैं। एक मिशन है कुरैश की तरफ, फिर हिजरत है, और फिर हिदायत है उम्मत की, जिसने आज़ादी ले ली कुरैश से, निकल के आ गए, और वो है मदीने का दौर। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी ज़िंदगी का पहला मिशन जो था वो फिरौन के ख़िलाफ़ था, कुफार के ख़िलाफ़ था, फिर हिजरत है दरमियान में, रसूल की हिजरत भी है अलैहिस्सलाम मौजज़ाना है, और फिरौन से हिजरत भी मौजज़ाना है। एक हिजरत सहरा में है, और एक हिजरत दरिया के और पानी की दूसरी तरफ है, समुंदर की दूसरी तरफ है। अब उस तरफ जाकर जब वो सहरा में गए, सहरा से दूसरी तरफ पहुँचे हैं मूसा अलैहिस्सलाम, तो उनकी अपनी उम्मत है, अब कुफार नहीं है, उनकी अपनी उम्मत है, मुसलमान उम्मत है, लेकिन फिर उनको मुनाफ़क़त का सामना करना पड़ा। हमारे नबी पहुँचे हैं मदीने में अलैहिस्सलाम, अब उनकी अपनी उम्मत है, अब उन्हें किस चीज़ का सामना करना पड़ा? मुनाफ़क़त का। तो यानी एक उनका एक ब्लू प्रिंट जो है ना, कि इस तजुर्बे से जिससे आप गुजर रहे हो, उससे मेरे रसूल मूसा पहले गुज़र चुके हैं। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की और खसूसियात में से ये भी है कि उन पर तौरात नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ताला के अहकाम थे, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ, जिसपे अल्लाह ताला के, जिसमें अल्लाह ताला के अहकाम है। तो दोनों में एक बहुत ज़्यादा तशाबो है दोनों सीरतों में। लेकिन खैर, आज़ादी हासिल करने से पहले बनू इसराइल कहाँ पर थे? मिस्र में थे। मिस्र में वो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, जैसे आप समझें कोई जेल में रह रहा है। जब वो जेल में इंसान रहता है, तो उसको खाना, जेल वाला खाना मिलता है, नहीं जेल वाला खाना, क्योंकि वो जेल में रह रहा है। जब वो गुलामी की जिंदगी में रह रहे थे, तो उनको खाना कौन खिला रहा था? फिरौन, गुलामों का खाना। और गुलामों का खाना क्या है? बकल, किस्सा, फूम, अदस, बसल। उद्उ लना रब्बक युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्द मिन बकलिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। वो कहते हैं जब वो सहरा में पहुंचे हैं ना, तो अल्लाह ताला ने, अब वो सहरा में पानी वहाँ है नहीं, खाना वहाँ है नहीं, साया वहाँ है नहीं, कितना अगर आज़ादी तो मिल गई, लेकिन ज़िंदगी नहीं बच सकती इस तरह से। लाखों की वो तादाद में है, उनमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, कैसे बचेंगे? तो अल्लाह ताला ने साया का इंतज़ाम किया, वल्लना अलैकुमुल घमाम, साया तो हो गया। खाने का इंतज़ाम किया, व अनज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, मन्ना और सलवा का भी इंतज़ाम कर दिया, आपको किस्सा मालूम है। अब पानी रह गया, तो पानी का क्या इंतज़ाम किया? फनफजरत मिन हुस्नता अशरत आइना, 12 जो है वो फुवारे निकल आए पानी के, राइट। अब वो जो पानी के जो निकले छूटे, और 12 कबीलों के लिए 12 पानी के स्टेशन बन गए,
अब उनके पानी का भी इंतज़ाम, खाने का भी,

0: छोटी सी मिसाल है ये सूरतुल अहज़ाब में, मा जअलल्लाहु लिरजुल मिन क़ल्बैन फी जौफिही, शादी के बारे में बात हो रही है, अल्लाह ताला ने जज्बात के बारे में बात की है, और अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ताला ने किसी भी आदमी के दिल में दो दिल, किसी आदमी के अंदर दो दिल नहीं डाले। मा जअलल्लाहु लिरजुल मिन क़ल्बैन फी जौफिही, यहाँ पे दो अल्फाज जो है वो ज़रा अजीब हैं। एक तो है रजुल, मर्द, लेकिन अल्लाह ताला ने तो मर्द इंसान कहा होता तो क्या फ़र्क पड़ जाता, और फिर दिल की बात है तो दिल कहाँ होता है, सीने में, सीने का लफ्ज़ अरबी में है सदर, तो अगर कहा होता मा जअलल्लाहु लि इंसान मिन क़ल्बैन फी सदरिही, रजुल की जगह इंसान और जौफ की जगह क्या सदर, अगर इंसान कहा होता तो कौन शामिल होता, मर्द भी और औरत भी, ठीक है, और अगर सदर कहा होता जौफ की बजाय तो सिर्फ सीने की बात हो रही होती, जौफ पूरा जिस्म होता है, बात आप समझ गए होंगे। अल्लाह ताला ने मर्द के जौफ के अंदर, यहां से यहां को जौफ कहते हैं, पेट से लेके सीने तक गर्दन तक ये जौफ है हमारा, इसके अंदर दो दिन नहीं डाले, लेकिन औरत के अंदर तो बच्चा आ जाता है ना, और जब बच्चा आ जाता है तो कम अज़ कम कितने दिल हो जाते हैं, दो तो हो जाते हैं, लेकिन वो सीने में नहीं होते, लेकिन वो कहाँ होते हैं, जौफ में तो होते हैं ना। सुभानअल्लाह, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफिही, सुभानअल्लाह। इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, मूसा अलैहिस्सलाम कौन सी कौम पे भेजे गए थे, बनी इसराइल। ईसा अलैहिस्सलाम कौन सी कौम पे भेजे गए थे, सूरतुस्सफ़ में दोनों का एक आयत के बाद दूसरे का जिक्र है, पहले मूसा फिर ईसा। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी लिमा तुज़ूरनी, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा अपनी कौम से, अपनी कौम से कहा मेरी कौम मुझे तकलीफ क्यों देते हो, ये मूसा के अल्फाज हैं। अगली आयत में किसके अल्फाज आएंगे, ईसा के, किस कौम से बात कर रहे हैं, उसी कौम से जिससे मूसा बात कर रहे थे, यही बात है ना। यहां कहते हैं या इफ क़ाला ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल, जब ईसा मरियम के बेटे ने कहा बनी इसराइल, इसराइल की औलाद, मैं अल्लाह का रसूल हूं तुम्हारी तरफ, एक ने कहा मेरी कौम, दूसरी ने कहा बनी इसराइल, देखें। और फिर दूसरा मूसा के बारे में जब कहा था तो मूसा के वालदैन का जिक्र किया, मूसा इबन कुछ कहा कि नहीं, लेकिन ईसा के बारे में क्या कहा, इफ क़ाला ईसा इब्न मरियम, तो दो फर्क आ गए, इन फर्कों को समझ लें, और ये एक के बाद दूसरी है, दोनों आयात सूरतुस्सफ़ की हैं। देखिए किसी कौम से होना उसके लिए लाजमी ये है कि आपके वालिद उस कौम से हों। जब मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ना मेरी कौम, तो क्या कह रहे हैं, मेरे वालिद साहब आप में से हैं, मेरे वालिद साहब आप में से हैं। ईसा अलैहिस्सलाम कभी भी या कौमी नहीं कहते मेरी कौम, क्यों, उनके तो वालिद हैं ही नहीं, सिर्फ वालदा है, और वालदा से कौमियत नहीं आती, कौमियत कहाँ से आती है, फादर से आती है, इसीलिए आपका लास्ट नेम, आपका नाम कहाँ से आता है, फादर, आपकी शनाख्त बाप से आती है, आप मदर किस कोई भी एथनिसिटी रखती हो, आपका जो नाम है, हेरिटेज है, वो कहाँ से आ रही है, फादर से आ रही है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा या बनी इसराइल, या कौमी कहा होता तो बहुत ही गलत बात होती, अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की, यहाँ तक कि मरियम सलामुन अलैहा की हुर्मत को बरकरार रखा है इन अल्फाज में। दूसरा, यहूदियों ने नई मज़े का हीला डाला, यहूदी कहते हैं कि असल में यहूदी होने के लिए, बाकी कौमों के लिए और है, बाकी कौमों में से होने के लिए बाप का उस कौम से होना ज़रूरी है, यहूदी होने के लिए माँ का उस कौम से होना ज़रूरी है, यानी माँ यहूदी हो तो तुम यहूदी हो, उन्होंने नया फार्मूला निकाला, बात की बात है, मैंने कहा बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, लेकिन तुम अपने आप को इसराइल की औलाद क्यों कहते हो, बाप के नाम से तो पुकारते हो, अगर बाप से एथनिसिटी नहीं आती, तुम्हारी शनाख्त नहीं आती, तो तुम्हारी कौम का नाम ही बाप से है, इसकी तो कोई तुक ही नहीं बनती। फिर मैंने एक और सवाल भी पूछा, मैंने कहा मूसा, तुम रबाई से मैंने बात की थी, मैंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो तुम्हारे नज़दीक भी मदियन भाग गए थे ना, मदियन भाग गए थे, कहते हाँ भाग गए थे, बाइबल में भी है मदियन अरब कौम है, कहते हैं हाँ अरब कौम है, वहाँ मदियन में उनकी शादी हो गई थी, शादी किससे हुई थी, अरबी औरत से हुई थी, पे औलाद हुई उनकी, तो तुम्हारे नजदीक तो मूसा की औलाद अरब है। फिर मसला क्या है यार? तो अल्लाह ताला ने, बात असल में यह है कि असल में नाम जब इंसान लेता है ना, तो नाम अपने बाप का लेता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस औरत को, इस अजीम शान औरत को इतना मकाम दिया कि एक नबी का नाम लेने के बाद ईसा, इतना काफ़ी ना समझा कि सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाए, बल्कि कि ये कि वो मरियम के बेटे हैं, उनका नाम लिया जाए ख़ास, ताकि ये बात वाजे रहे कि ये ऐसी माँ है जिसके, इस ऐसे बच्चे की माँ है जिसको बाप की ज़रूरत नहीं थी, और इसीलिए वो अपनी कौम को इस तरह नहीं बुलाता। वो कहता है या बनी इसराइल। सुभान अल्लाह, इस एक छोटी सी आयत में हमारा ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक अकीदा, हमारा मरियम सलामुन अलैहा की हुर्मत के मुतालिक अकीदा, और जो मकाम अल्लाह ताला ने उन्हें दिया है, किसी और नबी के बारे में आप ये नहीं देखेंगे नूह इब्न मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नहीं देखेंगे कुरान में, नहीं नज़र आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम इब्न आपको नहीं नज़र आएगा, दाऊद इब्न नहीं नज़र आएगा, लेकिन ईसा के साथ मुख्तलिफ मकामात पर क्या नज़र आ रहा है? ईसा इब्न मरियम। तो इसमें किसको इज्जत दी जा रही है? ऐसी औरत जिसने इतनी जिल्लत का सामना किया है अपनी जिंदगी में कि आप अंदाजा नहीं कर सकते, उसने जिस जिल्लत का सामना किया है सलामुन अलैहा, आप अंदाजा करो कि उस जिल्लत का सामना करने से पहले कुरान ने रिकॉर्ड कर लिया, उन्होंने कहा या लैतनी मित्तु कबला हादा, काश के मैं इससे पहले मर गई होती। उनके अल्फाज कुरान में मरियम में रिकॉर्ड है। और फिर जो खुलेआम लोगों ने उनकी बेइज्जती की है, उन पर इल्ज़ाम लगाया, किसी एक ने, आपको आपसे कोई ऐसी बात कोई फ़ोन पे कर दे, कोई टेक्स्ट मैसेज पे कर दे, कोई प्राइवेटली कोने में जाके कर दे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। सारे इकट्ठे होके, सारा मुसलमान मजमा इकट्ठे होके जो उनकी बेहरमती कर रहा है, तो अल्लाह ताला का इंसाफ देखें, जिस औरत ने ये तकलीफ़ और ये इम्तहान अल्लाह की खातिर उसने बर्दाश्त किया है, उसका क़्यामत के दिन तक उसका एहतराम किया जा रहा है। सुभान अल्लाह। ईसा का नाम लेते हुए ईसा इब्न मरियम, इफ़क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल, जब भी उनकी ज़बान से या बनी इसराइल निकलता है तो उनकी माँ को सलाम है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा व सलामुन अलैहा। या ईसा इब्न मरियम, इफ़क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल। सुभान अल्लाह। मैंने ये नोट्स में डाला नहीं था, लेकिन मैं आपसे फिर भी जिक्र कर देता हूँ अपने नबी के बारे में। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, अपने रसूल का भी थोड़ा जिक्र होना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में या आदम उसकुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, या का लफ्ज़ समझते हैं आप? हम तो वैसे इस्तेमाल अब नहीं करते, लेकिन जैसे आदम, आप और आपकी बीवी, किसी को पुकारने के लिए या इस्तेमाल किया जाता है। या आदम, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, या नूह। इसके बाद ताला कहते हैं या इब्राहिम कद सद्दक्ता अर्रुया, या इब्राहिम अन्ना देना, या इब्राहिम, या नूह, या आदम, या इब्राहिम, या ज़करिया इन्ना नुबशिरुका बिगुलाम, या ईसा इन्नी मुतवफ़ीका वराफ़िउका इलैया, या मूसा इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी, या दाऊद इन्ना जअलनाक खलीफतन फिल अर्द। अंबिया के साथ बार बार क्या आ रहा है? या एक मरतबा कुरान में नहीं है या मुहम्मद, एक मरतबा नहीं है। जब नबी को पुकारते हैं तो कहते हैं या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दथिर, या अय्युहन नबी बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, या अय्युहल मुज़म्मिल कुम फअंज़िर। सुभान अल्लाह। उनको नाम से ही नहीं पुकारते? अच्छा, उनको नाम से वो नहीं पुकारते जब नए बदू इस्लाम में आए, कबीले इस्लाम में आने शुरू हुए हुदैबिया के बाद, तो उनको इस्लाम की तहजीब का कुछ इल्म नहीं था। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए, कबीले के कुछ सरदार वो घर के अंदर थे, वो इंतज़ार कर रहे हैं घर के बाहर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर नहीं आ रहे। वो कहते हैं या मुहम्मद उखरुज अलैना, मुहम्मद बाहर निकलिए, हमने बात करनी है। कैसे पुकारा? या मुहम्मद। अच्छा, या मोहम्मद के अल्फाज में कोई बेअदबी नहीं है असलन, क्योंकि या आदम, या इब्राहिम, या मूसा, या ईसा, वो तो कुरान ने भी इस्तेमाल किया है, لیکن جب عام مسلمان نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا یا محمد اخرج علینا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، لا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تم ایسے اس کو ان کو مت پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایسا کیا تو تمہارے سارے اعمال ہبت کر لیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ، اتنا اہتمام اللہ تعالیٰ خود نہیں کرتے اور کسی اور کو نہیں کرنے دیتے. اور پھر ان کا نام محمد، محمد جب بھی استعمال کیا ہے قرآن نے، چار مرتبہ محمد آیا ہے اور ایک دفعہ احمد آیا ہے، یہ بھی سن لیں. آل عمران میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول، جہاں محمد کا لفظ آ گیا رسول بھی آ گیا. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ، محمد کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. ساتھ میں سورۃ الفتح میں کہہ دیا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ایک مقام ہے جہاں پر رسول نہیں آیا، اور وہ کون سا مقام ہے؟ سورۃ محمد. سورۃ محمد آل عمران میں رسول کے ساتھ ذکر، احزاب میں رسول کے ساتھ ذکر، فتح میں سورت رسول کے ساتھ ذکر، چار مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، چوتھی دفعہ جو میں ذکر کر رہا ہوں سورت محمد میں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. سورت محمد کی آیت ہے، وہاں پر محمد کا ذکر ہے لیکن کس چیز کا ذکر نہیں ہے؟ رسول کا. کیونکہ وہاں پر ایک اور بات ہو رہی تھی، کی جائے گی. اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جیسی تعریف وہ اللہ کی کریں گے کبھی کسی رسول نے، کسی نبی نے، بلکہ کسی انسان نے نہیں کی. اور یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے، جیسی تعریف اللہ کی اور جیسی وحی اللہ تعالیٰ نے رسول کو دی ہے نا، اس سے عظیم تعریف کسی اور کو نہیں دی گئی. اور شاید اس طرف بھی اشارہ ہے اس روایت میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن ایسی تعریفیں سکھائیں گے جو کبھی کسی مخلوق کو نہیں سکھائی گئیں، اور ان کو ابھی تک نہیں سکھائی گئی تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ سکھائی جائیں گی اس وقت. تو یہ ہے، ہو گئے احمد. لیکن دوسری طرف کہا وہ ایسی شخصیت ہے جس کی سب سے زیادہ کیا کی جائے گی، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے گی. اب اندازہ کریں عیسائی مذہب آج مسلمان مذہب سے تعداد کے اعتبار سے 2 سے 3 گنا بڑا ہے، تعداد میں وہ ہم سے بہت زیادہ ہے، لیکن حمد پھر بھی کس کی زیادہ ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ کریں. پھر اندازہ کریں کہ عیسائیت، کیونکہ میں نے عیسائیت کو قریب سے دیکھا ہے، امریکہ میں رہ کے میں نے عیسائیت کے بہت سارے فرقے، بہت سارے چرچز، ڈینومینیشنز دیکھی ہیں. عیسائیت کی بنیاد ہے حمد، پریز دا لارڈ، بی گریٹفل. ساری پورے مذہب کی بنیادی کیا ہے؟ حمد. اور پھر پریز جیزس، تھینک جیزس، پوری بنیاد وہ ہے. اور اس جس شخص کی غلط طریقے سے اتنی حمد کی جانی تھی اس کی زبان سے کہلوا دیا قرآن میں کہ کوئی آ رہا ہے جس کی حمد زیادہ ہوگی. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تھوڑے سے خواص تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے میں جو قرآن میں. تو ہمیں نعتوں کا شوق ہے، جیسی نعت، جیسی تعریف ہمارے نبی کی قرآن میں ہے نا علیہ الصلوۃ والسلام، انسان کر ہی نہیں سکتا، انسان کے لیے ممکن ہی نہیں. چلے ایک اور مثال کر لیتے ہیں بریک سے پہلے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ایک آیت میں کافرون، دوسری آیت میں المشرکون. کافر اور مشرک کا فرق یہاں کیوں کیا گیا؟ ایک آیت میں کافر، دوسری آیت میں مشرک. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے، اپنے منہ کی ہوا سے، پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ اپنا نور مکمل کر کے رہے گا جتنا بھی کافر نفرت کر لیں. ولو کری حل کافرون. دوسری طرف کہا کہ اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ کہ وہ تمام دین، تمام نظاموں پر حاوی ہو جائے، جتنا بھی مشرک اس سے نفرت کر لیں. ولو کریہ المشرکون. تو یہاں کافر اور مشرک کی تمیز میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ بہت ساری باتیں اس میں کی گئی ہیں، کچھ باتوں کا جائزہ ہم لے لیتے ہیں اکٹھے. نور روشنی کو کہتے ہیں، کفر किसको कहते हैं पता है? इनकार को ही नहीं कहते सिर्फ, कुफर अरबी में कहते हैं दफनाने को। कुफर का असल मायना अरबी में क्या है? दफनाना। जो चीज दफनाई जाती है वो अंधेरे में होती है। कहा है कि जो लोग अंधेरे में है ना, वो दुनिया को भी अंधेरे में रखना चाहते हैं, चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंहों से बुझा दें, क्योंकि वो खुद किधर हैं? अंधेरे में। बोलो करी हल काफिरून, अंधेरे वाले लोग हैं काफिर। जो चीज को अंदर दफनाता है उसको काफिर कहा जाता है। बल्कि काफिर का लफ्ज पुरानी अरबी में इस्लाम से पहले काफिर का लफ्ज किसान के लिए इस्तेमाल होता था, क्योंकि वो बीज को जमीन में दफनाता था, इसलिए उसको काफिर कहा जाता था। तो यहां पर जो कुफार का लफ्ज और काफिरून का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, उसमें एक मंजर बन दिखाया गया है हमें कि एक तरफ है अल्लाह का नूर और एक तरफ है उस नूर को छुपाने के लिए जो उसको दफनाना चाह रहे हैं अपने मुंह से, अपने प्रोपेगेंडा से, अपनी बकवास से उसको वो छुपाना चाह रहे हैं। अब उसके अपने मीडिया को इस्तेमाल करके, अपने प्रोपेगेंडा को इस्तेमाल करके, अपने चैनल्स को इस्तेमाल करके, अपनी फंडिंग को इस्तेमाल करके, अल्लाह कह रहा है वल्लाहु मुतिम्मुन, वो तो करके ही रहेगा, उसे तो मुकम्मल करनी है अपनी अपनी रोशनी। वो जितनी भी नफरत कर लें उनकी नफरत से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इस आयत में भी बहुत अजीम हिकमत पता है क्या है? कुरान अल्लाह ताला का, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने कुरान को नूर बताया है। अल्लाह ताला ने कुरान के बारे में कहा है फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व नूर अल्लज़ी अनज़लना, अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ और उस नूर पर ईमान लाओ जो हमने नाजिल किया है। तो कुरान के औसाफ में से एक अजीम वस्फ क्या है? नूर। अनज़लना इलैकुम किताबन व नूरन मुबीना, हमने तुम पर किताब नाजिल की और बहुत वाज़ेह नूर नाजिल किया। नूर, अच्छा नूर की जो नूर का दुश्मन क्या है? तारीकी, ज़ुलुमात, है ना। ये लोग अपने मुंह से, अपने अल्फाज से ऐसे समझते हैं कि ये किसी मोमबत्ती को बुझा रहे हैं। युरीदुना लियुतफिउ नूरल्लाहि बि, तस्वीर क्या खींची जा रही है? को बारीक सी मोमबत्ती है उसको वो बुझा रहे हैं। अल्लाह ने क्या मिसाल दी है? वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, जैसे सूरज निकलता है ना तो सारी चीजों पर रोशनी आ जाती है। अब अंदाजा करो, कोशिश कर रहा है ये सूरज, वलौ करी हल काफिरून, क्योंकि जो नूर अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल किया है वो तो सबको रोशन करके रहेगा, लेकिन वो रोशन फौरन होता है कि स्टेजेस में होता है? स्टेजेस में होता है। इस तरह इस नूर का इत्माम जो है वो स्टेजेस में होगा। तो इंसान को, मुसलमान को खामखा पैनिक नहीं कर, ये देखिए क्या क्या बातें कर रहे हैं इस्लाम के बारे में, अब क्या होगा, अब इसका हम कैसे जवाब देंगे, ये तो उन्होंने बहुत ही बड़ा फितना शुरू कर दिया है, अब तो ये नूर खत्म होने के खतरे में है। नो, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि, वलौ करिहा अल-काफिरून। और इसमें पैनिक करने के बजाय हमारा काम क्या है, हमें क्या जिम्मेदारी दी है? अल्लाह ताला ने मुसलमान को ये जिम्मेदारी दी है कि उसका सीना और उसकी जबान इस नूर को फैलाए, और जब मुसलमान इस नूर को फैलाने का काम नहीं करेगा तो अल्लाह ताला बेसिकली क्या करेगा, हमें हटा के किसी और को रख देगा जो ये काम करने के लायक होगा। हमें चुना था क्योंकि हमारे अंदर सलाहियत है, अगर उस सलाहियत का तुमने इस्तेमाल नहीं करना तो ठीक है, अल्लाह ताला यस्तब्दिल कौमन गैरकुम थुम्मा ला यकूनू अम्सालकुम, तुम्हारी जगह किसी और को रख देगा, वो तुम्हारी तरह के निकम्मे नहीं होंगे। पोटेंशियल हर एक में होता है, टैलेंट हर एक में होता है, टैलेंट का इस्तेमाल सारे नहीं करते, यही बात है ना। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिहि वलौ करिहल काफिरून। अच्छा दूसरी तरफ काफिर नहीं कहा अगली आयत में, मुशरिक कहा, उसकी क्या हिकमत हो सकती है? यहां कहा है कि अल्लाह ताला ने एक दीन दिया और उस दीन को तमाम अदियान पर जाहिर कर दिया, यानी उन पर गालिब कर दिया, और इसकी वजाहत लियो दे रहा हूं, उसका इजहार करना, उसके कुछ मायने हैं, एक है गालिब करना और दूसरा कि इसका हक इतना जाहिर हो जाए कि बाकियों का बातिल भी जाहिर हो जाए, कुछ जहूर से इसका ताल्लुक भी है। तो हुआ ये कि अब लोग क्या सोचेंगे कि ये दीन तो फैल रहा है लेकिन ये भी एक मजहब है और बाकी और भी मजहब है, इनको साथ साथ चलने दो, बराबर हैसियत के हैं, जैसे इंसान सारे बराबर हैं उनके मजाहब भी बराबर हैं, कोई एक कल्चर किसी कल्चर से बेहतर नहीं है, वर ऑल इक्वल, डिवर्सिटी, यूनिवर्सिटीज में डिवर्सिटी सिखा रहे हैं ना आजकल। डिवर्सिटी में क्या है, आप ऐसे हो या वैसे हो या जैसे हो, आप सारे क्या हो, एक ही जैसे हो, आप सब बराबर हो, यू नो डिवर्सिटी के नाम पे हक और बातिल बराबर हैं, गलत और सही बराबर है, यू नो अदब और तहजीब और जानवरपना बराबर है, और इसका नाम हमने बड़े प्यारे नाम रखे हैं डिवर्सिटी, राइट। अल्लाह ताला कह रहा है जितना भी ये मुशरिक होता क्या है, पता है मुशरिक क्या होता है? एक चीज को दूसरी के साथ जोड़ देना, उनको बराबर कर देना। इसीलिए बराबर करने के लिए एक और लफ्ज अरबी में है अदल, ثم الذين كفروا بربهم يعدلون, जो लोग अल्लाह ताला पे अपने रब पर कुफर करते हैं वो चीज़ों को बराबर करते हैं, जो लोग बुतों को अल्लाह ताला से बराबर करते हैं, जो लोग ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से बराबर करते हैं, और जो और अदियान को इस्लाम से क्या करते हैं, बराबर करते हैं। ठीक है, आप भी, आपका भी है, हमारा भी है, सबका है, आपको हमारे दीन को गलत साबित करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने दीन की हक की बात इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको चाहेगा वो उधर चला जाए, जिसको चाहेगा वो उधर चला जाए, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं आप जिससे भी जाके खा लो, वो जो दीन है जिससे भी जाके आप जो भी पूजा कर लो, हर एक का अपना मस्त है। आपको इतनी ज़्यादा इस दीन के बारे में और इसके गलबे के बारे में और इसकी बात फैलाने के बारे में और इसके दलाइल पेश करने के बारे में क्या तकलीफ़ है आपको, क्या ज़रूरत है इतनी आपको? तो अल्लाह ताला कह रहा है जिन लोगों को शिर्क पसंद है ना, शिर्क सिर्फ अल्लाह में नहीं होता, शिर्क अदियान में भी होता है, सबको एक साथ रख लो, को एग्जिस्टेंस है, ये टॉलरेंस की बात है, तो उनके बारे में कहा ये जितना भी नफरत कर लें, इस दीन ने सामने ऊपर उभर कर आना ही है, और जितना ये जाहिर होगा उतना उनका बातिल सामने आ जाएगा, इसी बात से वो डरते हैं, इसी बात से वो मुखालफत करते हैं। वलौ करिहल मुशरिकून, अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या वो कुरान पर उस पर तदब्बर नहीं करते? तदब्बर कहा जाता है किसी चीज के पीछे देखना, दुबर पीठ को कहते हैं। इस आयत के पीछे क्या है, इसके पीछे क्या हिकमत है, एक उसका जाहिर है और उसके पीछे क्या क्या क्या क्या हिदायत, क्या क्या रोशनी, क्या क्या नसीहत उसके पीछे है। असल में ये पूरा कोर्स एक तरह से तदब्बर ही का कोर्स है, सारी मिसालें जो मैं आपको दे रहा हूँ वो हम तदब्बर ही की एक्सरसाइज कर रहे हैं एक तरह से। अल्लाह ताला सवाल पूछते हैं अफला यतदब्बरून अल कुरान, और अगर किया होता तदब्बर तो कहते हैं वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाह, और अगर ऐसा होता कि ये अल्लाह के अलावा किसी और से आया होता, अगर कुरान अल्लाह ताला के अलावा किसी और से आया होता, कहते हैं लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा, तो ज़रूर ऐसा होता कि इसके अंदर वो बहुत सारा इख्तिलाफ पाते। कॉन्ट्रडिक्शन को क्या कहते हैं उर्दू में, तनाकुज़ात, तजाद, बहुत ज़्यादा तजाद पाते उसके अंदर, इख्तिलाफन कसीरा यानी अगर कुरान अल्लाह ताला की तरफ से ना होता तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता, तजाद होता। और इस आयत में इशारा इस बात की तरफ भी है जो तदब्बर करेगा कुरान पर उस पर यह बात पूरी तरह वाज़ह हो जाएगी कि यह अल्लाह ताला के अलावा किसी और का हो ही नहीं सकता। वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाह लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा। अजीब बात यह है, इख्तिलाफ का लफ्ज़ कुरान में बहुत दफ़ा आया है, इख्तिलाफ़ लैल व नहार, इख्तिलाफ़ का लफ्ज़ बहुत दफ़ा आया है, लेकिन इख्तिलाफन जो अरबी नहू समझते हैं ये मनसूब है और नकीरा है। इख्तिलाफन पूरे कुरान में सिर्फ एक जगह है यहाँ पर, तो लफ्ज़ी एतबार से भी अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और का होता तो इख्तिलाफन का लफ्ज़ भी कहीं और इस तरह नहीं आया, एक ही मरतबा आया है। सुभानअल्लाह, वलौ काना मिन इंदी गैरिल्लाह लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा।
1: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
0: इस आयत को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत मजे की हिकमत है, ये बहुत बहुत खूबसूरत हिकमत है। इस तरह सोचें कि तीन ग्रोह हैं मुसलमानों के, ए बी और सी, ठीक है, तीन ग्रोह हैं मुसलमानों के, और ए और बी की लड़ाई हो गई, शदीद लड़ाई होगी दोनों की। अल्लाह ताला कह रहे हैं وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, अगर ए और बी की लड़ाई हो जाए, एक दूसरे को मार कुटाई पर आ जाए, कत्ल तक नौबत आ जाए, तो उन दोनों के दरमियान सुलह करवाओ। किससे कहा जा रहा है सुलह करवाओ, ए से या बी से या सी से? सी से कह रहे हैं कि ए को बिठाओ और बी को बिठाओ और अब सुलह कराओ। तो तीन ग्रोह हो गए, ठीक है।
2: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Hi. Have you ever asked yourself what you want to become? If you are unsure what to do after school, Barnfield College will help you. Whether you want to learn a trade or go to university, you will find a course that transforms your ambitions into a career. Visit our campus from GCSE Results Day to begin your journey. With our support network and employer connections, Barnfield will set you on the path to becoming you. Find out more at barnfield.ac.uk. Barnfield College. Get September ready.
4: Did you see that guy on TV?
5: What, that No Comment guy?
4: Yeah, he was sick. What was his name?
5: I think it was Atiq Malik.
4: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
6: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
4: Liberty Law, there when you need us most.
7: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
8: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
9: Central Bedfordshire College is now enrolling for accredited adult courses starting in September 2026. We're offering childcare, ESOL, English and maths, employability and teaching assistant courses in Luton. Visit us at the Dallow Road Centre, LU11TB or the Thrive Hub on Upper George Street, LU12QX, every Wednesday between 9am and 3pm from the 26th of August, and we can help you apply. Apply now to support your future career prospects by gaining lifelong qualifications.
10: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
11: You could have the best product in the world, one that everybody wants or needs.
12: You could offer a quality service that really is second to none.
13: Or you could have offers that are simply unbeatable.
11: But it's all pointless if your potential customers don't know who you are.
14: That's those same potential customers who are also listening to Inspire FM right now.
15: Has it clicked yet?
14: To find out about an effective, ear-catching and low-cost advertising campaign, just click on inspirefm.org, then more, and advertise.
16: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
17: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing English Talks by various sheikhs. Continue listening to Inspire 105.1 FM.
0: And in this brief khutbah, I would like to share with you a reminder about a surah that I've been thinking about and studying for the last month. This is Suratul Insan. And in the beginning of it, there is a powerful question that Allah asks every human being. And in order to get the most out of the speech of Allah, especially when He uses the word Al-Insan, the human being, instead of thinking about humanity at large and the billions of people that live in this world and the people that have lived in the past, every one of us should be thinking about ourselves. I should be thinking about myself to get the most out of the ayah that mentions Al-Insan. So it's a very personal message catered to every single human being, and more particularly because we're fortunate enough to be believers. So as you hear the word human being, I should be thinking about myself and you should be thinking about yourself. هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. Was there ever a time that from the endless oceans of time, Ad-Dahr, the endless oceans of time, was there ever even a simple, small episode of time when human beings used to be something that wasn't even worthy of being talked about, wasn't even worthy of being mentioned, and also wasn't even worthy of being remembered? Allah is asking you and me a very simple question. Was there ever a time when no one remembered you? Was there ever a time when no one talked about you? When even if you did exist, people were shy to talk about you. They were uncomfortable to talk about you. And immediately in the next ayah, he says, he created the human being from a fluid, from a drop, nutfa, that is mixed, meaning mixed between the male and the female. And Allah is now talking about something, the sperm, that is, and the egg that meet each other, the pregnancy of a woman, that is an uncomfortable, embarrassing conversation. So it is not something you talk about casually. It's not something you're comfortable talking about. And in the previous ayah, Allah already said, you used to be something not even worthy of mention and not even something remembered. But there are layers of meaning inside these ayat that I want to unpack some of those layers for myself and all of you. The universe, the physical universe as we know it, physicists tell us it's existed for about 13.9 billion years. This planet has been around for maybe 4 to 5 billion years, the formation of this planet. In all of that endless ocean of time, I was not being talked about. I was not mentioned. I didn't exist. And even when this world came into existence, after this endless period of time, when humanity started on this planet, so much human history has passed and no one in that history knew who I was. I was never remembered. I was never mentioned. You can read about history and those people are relevant. The only one not relevant is you. You don't exist for them. They exist for you. You don't exist for them. Using this as a reminder, Allah says, the vast majority of time has passed where you and I were completely irrelevant. We're not part of the story. And this is Allah's way of reminding us that the few moments that we do exist after I come out of my mother. In fact, even when my mother was pregnant in the beginning, she had no idea that I was inside. Marrat bihi. She's walking around with the baby. She doesn't even know. And then when she notices her body changing, then they both start making dua. Lahin ataytana salihan. If you can just give us a good child. They don't even know who this child is. Even when they remembered my mother was thinking about me when I was still in her belly, she didn't know who I was. She couldn't actually think of me properly. She didn't know if I was a boy or a girl. She didn't know what kind of child I will be, what kind of features I will have. She knew nothing. But then after I even came into this world, even after I came into this world, you'll notice something. Human beings, by their design, one of the words for human, the origin of the word insan is actually uns. And uns means love and compassion. Human beings don't just give love, they also want to receive love and they want to receive compassion. So even from childhood, the moment you become a little bit self-aware, you are looking for attention. If your mother's not looking at you, mama, mama, mama, mama. Those of you that have kids know this already. Kids need attention. They're always looking for attention. When they get a little bit older, they draw something, they want to show you because they want your attention. They want to be acknowledged. Look at how I'm dressed. Look at what I did. Look at what I can do. The kid can't even jump yet. This is his jump, but he says, look at me. Look at this. Now look again. Because he wants that attention for himself. He wants to be madhkur. The word is madhkur. Someone who is mentioned. Someone who is remembered. This is put inside the nature of a human being. And as you grow older, you wanna, when you're a teenager, you wanna dress nicely. You wanna look good because you wanna be seen and noticed. Also, madhkur. You wanna be mentioned. You wanna be talked about. And as you grow further, now when you're in university, I know there's a convocation happening. It's a big deal to graduate. And what happens? When people get their certificate, you're gonna get a lot of uploads on Instagram and on Facebook of pictures of certificates that nobody cares about except you. But you have a need to be madhkur. You have a need to be mentioned. MashaAllah, congratulations, congratulations. We live our life looking for acknowledgement.
15: Even when people get married, the wife is looking for the acknowledgement of the husband. The husband is looking for the acknowledgement of the wife. We're looking to make our parents proud. You know, when you graduate, everybody's congratulating you, but you want to be madhkur to your dad. Dad, I graduated. Dad, it's done. Dad, did you see the picture? And you need to get that congratulations from your father or your mother, because there's always someone who we want to be remembered by. You know, there are studies now that people are now more isolated and feel more lonely and alone than ever before in history. It's interesting. I was at an Islamic school in another Muslim country, and I was talking to a number of boys and girls. There were about 300, 400 boys, 300, 400 girls, 13, 14 years of age. And I gave a lecture, and the principal and the teachers, everybody was there. So they had a question answer session, and nobody asked a question. 800 children in the room, nobody asked a question. And I said, they're not asking a question because the police is watching them. The teachers are there, the principal is there, the cameraman is there. They don't want to get in trouble. So what I'm going to do is I'm going to go into the crowd and talk to these kids with no camera, no microphone. I just want to talk to them. I went inside the girls' section, just talking to these young girls, 2 hours. They couldn't stop asking their questions. And on the other side, the boys, another 2 hours. They couldn't stop asking their questions. And the most common question was, what do you do if you feel alone all the time? What do you do if you feel invisible, if nobody sees you? Human beings have such a deep desire to be madhkur that a teenager sees all their other friends online and they're like, I don't have an online account. I don't have that many followers. I'm not being seen. I'm not madhkur. I better take another picture. No, I better change the filters. I better do something else. I better change the background, or the light wasn't good enough, and then post it. Ah, somebody will put a heart emoji. Somebody will put a thumbs up. I'm madhkur. Ah, I can exist now. And if you don't post it, if you don't post your next slice of pizza, if you don't post your, you know, where you're standing, what park you're in, or some wisdom from Abu Jahl or something, if you don't post that, then all of a sudden nobody knows you exist, so you become ghayr madhkur. For the vast majority of the existence of the universe, and for the vast majority of the existence of humanity, you were ghayr madhkur. And there's a time that's coming pretty soon where you and I are going to be in the grave, and some people will remember us, and they will cry over us, and then time will pass, and we will be ghayr madhkur again. We remember famous people, right? We remember scholars, for example, in Islamic history. We remember people like Imam Shafi'i rahimahullah, or Imam Abu Hanifa rahimahullah, but they had a big family. Nobody remembers their family. A lot of those people are invisible to us now. We don't remember the rulers. We don't remember the millionaires and the billionaires. We don't remember the good-looking people. We don't remember the popular people, the famous people. We don't remember the art. We don't remember them. They're gone. They became irrelevant again. And Allah is teaching you and me, you're running after this thing to be relevant, to be remembered, to be talked about, to have users engage with you. This is what you want all the time. But you were created for the most part ghayr madhkur, and you will be ghayr madhkur again. You're going to go back to that irrelevance again. That's a pretty depressing outlook, that nobody's going to remember me. Nobody's going to know. And by the way, people who don't even believe in Allah, they also feel the need to be remembered. So you'll have billionaires that don't believe in anything. They don't believe in any religion. And they're about to die. They're old. They're about to die. And they take their wealth and they donate it to a hospital, or they donate it to a charity. But they put a condition: put my name on the building and make a statue of me and put it at the entrance, because even if I don't exist, my memory needs to exist. I still need to be madhkur even if I don't exist. This is something put deep inside them. But this desire that Allah put inside of a child to get the attention of the child, or the desire that Allah put inside human beings that is driving the multi-billion dollar social media industry. If human beings did not want attention, you couldn't have social media. It wouldn't exist. It's not some evil machine. It only feeds on our own desire. We have this desire, which is why it works the way that it works. It feeds off of our own energy. Well, the thing is, why did Allah put this inside me? What's the point of it? Why am I looking for acknowledgement all the time? Why do I feel like something is missing if I didn't get acknowledged? You know, I feel something if I feel invisible, there's an emptiness inside me. And Allah Himself describes this in the latter ayah. He says, "Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura." We guided him to a journey, a path. Every human being inside them, Allah put in, programmed inside them that they are in this life on a journey. Now there's one part of that journey, whether you realize it or not, you're on the journey anyway. إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. Every day is passing by, life is a journey, every human being is making a journey towards death. Every one of us, every single day, is one day closer to death. That journey is happening on autopilot. That's not controlled by me, that's already decided by Allah. But there's another journey. Not the journey of my lifespan, but the journey inside of my heart and inside of my mind. There's a journey Allah wants me to make back to Allah. We came from Allah, we belong to Allah, and Allah wants us to make a journey back towards Him in our head, in our mind. But the mind is too preoccupied wanting to be acknowledged by someone else, wanting to be acknowledged by other human beings. And Allah wants that heart and that mind to first be busy looking for the acknowledgement of Allah. Is my Rabb pleased with me? Is my Rabb looking at this good deed and is He happy with this deed? Is my Rabb happy with this service? Am I living my life in a way that eventually when this life journey ends, I'm going to get to meet Him? He says, "Imma shakiran." Allah made the human being with an ability to go on this journey. And he has two choices. You and I, every one of us has two choices. Either we're grateful or we're extremely ungrateful. Imma shakiran wa imma kafuran. So let's think about gratitude in simple language for a little bit. If I gave my son a bicycle and he says, thank you, dad. Thank you, Abba. I gave him a bicycle. But he never rides it. And he threw it on the side. And there's clothes on top of it. That thank you means nothing. Why? If he was riding the bike every day, if he was cleaning it up, if he was taking care of it, I would say this son is grateful for the bike. If he's never using it, and he's just trashed, it doesn't matter how much he says thank you for the bike, the fact that it's collecting garbage and dust, that means his words are empty. That's actually not gratitude. Simple enough. When Allah gave me guidance, Allah gave me a purpose in this life, and Allah says, will you be grateful for that guidance or not? Am I going to be grateful for that guidance or not? That means if I'm not using what Allah gave me, if I'm not putting it to use, then I can say Alhamdulillah all I want, it's meaningless. I'm actually not using the gift.